फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Arijit Singh's Into You. I'll tell you about it next.
1: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Ultra Vitamin D, the sunshine vitamin from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
2: Come to TRS at iTac Cash & Carry in the heart of Southall and stock up on a wide range of brands in grocery, chilled, bakery, confectionery, soft drinks, household and cleaning products and much more. Rush to TRS at iTac Cash & Carry Southall, open 24 hours, 7 days a week. TRS at iTac Cash & Carry Southall, UB2 4AX.
3: Old enough to be a legacy, smart enough to keep evolving. For 7 decades, WECO has blended Ayurvedic botanicals with modern science. That's not tradition, that's staying in power. WECO. Available at your nearest Asian grocery store.
2: India Wala Paneer, winner of the Great Taste Award 2026. Delicious, soft white and natural paneer. Ghar ka swad, India ka swad, aapke local Asian supermarket mein available.
4: Dosto, aap sabhi ka swagat hai Khelo aur Jeeto ke mega episode mein. Bumper prize jitne ke liye, ab main poochne wala hoon aapse the million dollar question. तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
5: जी पाजी।
4: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
6: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूंगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूंगा।
4: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
7: हेलो
6: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
7: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक।
6: सर जी, आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
4: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर।
8: सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय,
1: विजिट द गोल्ड बैंक, 215 द ब्रॉडवे साउथॉल, 0203 500 1111, goldbank.co.uk।

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour with Jamin Foods.
4: नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
5: Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा hit of the hour taken from Drishyam, the conclusion. लकी अली की आवाज में ये गाना मुस्कुरा दो. सो व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दृश्यम द कंक्लूजन? डू यू थिंक टीम दृश्यम इज स्टिल मुस्कुराई, स्माइलिंग? ओह, दे मस्ट बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक. आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी सम वेरी इंप्रेसिव नंबर्स एट द बॉक्स ऑफिस व्हेन इट फाइनली कंक्लूड्स इट्स थिएट्रिकल रन. व्हाट अबाउट यू?

0: such thoughtful, imaginative, beautiful lyrics. जोनिता गांधी की आवाज में क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, हजारों ख्वाहिशों से जैसे भर गई गुलमोहर की टहनियां. Anyone who's ever lived in Delhi, the advent of spring, when you see those beautiful gulmohar trees, absolutely resplendent with red, what a sight that is. And what a beautiful way of saying that mere khwaishon ki tehniya jo hai na, wo gulmohar se bhar gayi hai. My heart is bursting with desire, absolutely love it. Who's the lyricist? अभी गूगल आंटी से पूछती हूँ.
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस. बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स.
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार.
0: द हिट ऑफ द आवर विद जेमिन फूड्स. नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन मैंगो बॉल चिक्की और बहुत कुछ. जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया. कभी कभी ना मुझको तो ऐसा ही लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि क्यू गार्डन या हाइड पार्क इज इंडीड द अल्टीमेट प्लेस ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, दे प्रोबेबली नेवर वॉक डाउन अ स्ट्रीट इन दिल्ली एट स्प्रिंग टाइम विद गुलमोहर ट्रीज इन फुल ब्लूम ऑन आइदर साइड.

मांग यूं ही भरना तारे हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। कितना प्यारा है ये गाना। अमरजीत जी इन ब्रिस्टल कहते हैं, गुड मॉर्निंग शबनम, आई होप यू वेल, आई एम ऑन माय वे बैक टू ब्रिस्टल फ्रॉम माय हॉलिडे इन डेवन, आई होप यू हैड अ

0: Now on Ticketmaster and AXS in association with Berico Food Distribution Limited and PRC Direct. Don't miss your chance to witness the voice that is Jubin Nordial, radio partner Sunrise Radio.
1: And now the weather.
2: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
3: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Celebrate this Diwali with the Gold Bank. Gift your loved ones prosperity with a limited edition Lakshmi and Ganesh silver coin. Visit Gold Bank 215 the Broadway South Hall or call 0203 500 1111 or check out their special coins online at goldbank.co.uk and purchase while stocks last.
6: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
7: Must be won.
8: Must be won.
9: Must be won.
10: Must be

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Disco, your listener's choice.
1: Listener's choice, brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
0: We are going to have to work very, very fast. I don't have much time. Right, so tell me who this mystery person is.
4: Yeah, सबका एक image होता है. मेरा image ऐसा है कि मारामारी के साथ तो मैं बहुत ही like करते हैं लोग. और उसके अलावा लव एंगल वगैरह तो होते ही हर फिल्म में.
0: 07925-700-272. Do you know?
5: The hit of the hour with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
6: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है?
7: Me, me, me, me, me, me.
0: Listen to the voice again.
4: Yeah, सबका एक इमेज होता है. मेरा इमेज ऐसा है कि मारामारी के साथ तो मैं बहुत ही लाइक करते हैं. और उसके अलावा लव एंगल वगैरह तो होते ही हर फिल्म में.
0: Who is that mystery person?
8: I

0: From Kabil.
1: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
0: All right, we're guessing the film, okay? No clues to start with. Let's see who's going to be my hero of the hour. Can you work out what it is without a clue? Here we go.
4: मैं मजाक नहीं कर रहा. पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे एजुकेटेड यंग मैन की जरूरत है. एड नहीं देखा तुमने?
5: ओह कम ऑन डैडी, आप क्या समझते हैं रवि पुलिस ऑफिसर बन सकता है?
4: जरूर बन सकता है, मगर रवि मुझसे सिफारिश की उम्मीद मत रखना.
6: तो आप सिफारिश नहीं करेंगे? वेरी गुड, फिर तो मैं कल ही एप्लीकेशन भेज दूंगा.
0: 07925-700-272, would you like to hear it again?
4: नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा. पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे एजुकेटेड यंग मैन की जरूरत है. एड नहीं देखा तुमने?
5: ओह कम ऑन डैडी, आप क्या समझते हैं रवि पुलिस ऑफिसर बन सकता है?
4: जरूर बन सकता है, मगर रवि मुझसे सिफारिश की उम्मीद मत रखना.
6: तो आप सिफारिश नहीं करेंगे? वेरी गुड, फिर तो मैं कल ही एप्लीकेशन भेज दूंगा.
0: What is that?
7: The hit of the hour with Jamin Foods. नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.

0: Wunderbar. Your listener's choice.
1: Listener's choice brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
0: Reverse Ghana. Coming up after this hit of the hour.
4: The hit of the hour with Jamin Foods.
5: नवरात्रि के अवसर पर जेमिन फूड्स की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में जेमिन का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
6: अच्छा.

0: It's On Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: Fall in love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway and Austria with TravelHubWorld.com.
2: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
1: My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhani, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth. Satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
4: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
1: Khanam Ghee, the legacy lives on.
5: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
1: If you're missing the taste of India, feast on all your Delhi favourites right here in Birmingham at Via Delhi.
6: You mean those authentic golgappas and papri chaat?
1: Yes, and tandoori momos, mung dal halwa, Indo-Chinese and a wide range of lip-smacking favourites at Via Delhi. After Dubai, now in Birmingham.
6: So, let's go now. I can't wait.
1: And don't forget, you can celebrate your special occasions in their party hall or book their outside catering. Let us do the hard work for you. Birmingham's tastiest food hotspot, Via Delhi, 190 Soho Road, Handsworth, Birmingham.
7: Winner, winner, roast for dinner! This autumn at Aldi! Feed 4 for under £7 with British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
8: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन बरसे साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद. ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं.
9: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ. विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे.
8: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
10: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में. बंपर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूं आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
11: जी पाजी.
10: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
11: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूंगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूंगा.
10: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए.
12: हेलो
11: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
12: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक.
11: सर जी, आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए.
10: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर. सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक. हाय,
5: visit the Gold Bank, 215 the Broadway, Southall, 0203 500 1111. goldbank.co.uk.
1: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, we've got unbeatable deals waiting for you. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208 518 9100. That's 0208 518 9100. Tickets to India, bringing India closer.
5: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 0208 8574 7777.
0: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
13: Tune in to The Love Lounge with me, Amit Soda, every Sunday from 7 p.m. where it's all about the love music, romance, love tips, love dilemmas and so much more. See you there.